ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। कई दहाइयां कबल शुमाली कोरियाई एजेंटों के हाथों अगवा किए जाने वाले जापानी शहरियों में से दो के रिश्तेदार पीर के रोज जापान से अमरीका गए हैं। उनका इरादा है कि तमाम मगवियों को जल्द अज जल्द वतन वापस लाने की कोशिशों के सिलसिले में अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों और कानून साजों से तआवुन तलब करें। इनमें से एक रिश्तेदार योकोता ताकुया अगवा शुदगान के खानदानों के एक ग्रुप के सरबराह हैं। उनकी बड़ी बहन मेगोमी को उस वक्त अगवा किया गया था जब वो जूनियर हाई स्कूल की पहले साल की तालबा थीं। दूसरे जापानी का नाम इजुका कोइचिरो है। अपनी वालदा तागुची याइको के अगवा के वक्त वो सिर्फ एक साल के थे। मज़कूरा दोनों अफराद का मकामी वक्त के मुताबिक जुमेरात तक अमरीका में क़याम का मंसूबा है। रवां हफ्ते आलमी रहनुमा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के लिए न्यूयॉर्क में जमा होंगे। एक आला ईरानी ओहदेदार का कहना है कि तेहरान ने जारी तनाज़े के खात्मे के मुज़ाकरात की बहाली के लिए अमरीका को 7 शराइत से आगाह किया है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रजाई ने हफ्ते के रोज एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये ऐलान किया। ये काउंसिल ईरान की सिफारतकारी और कौमी दिफा की निगरानी करती है। तमाम 7 शराइत की मुकम्मल तफसीलात जाहिर नहीं की गई हैं, लेकिन उन्होंने लिखा कि अगर वाशिंगटन अपने लिए पैदा की गई मुसीबत से निकलना चाहता है और मजीद उलझने से बचना चाहता है तो उसके पास ईरान के हुकूक और शराइत को तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं है। इस पोस्ट से पहले रजाई ने अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सालिस मुल्क कतर के जरिए अमरीका को शराइत से आगाह किया गया है और सदर डोनाल्ड ट्रंप के जवाब का इंतजार है। उन्होंने अमरीका की जानिब से बहरी नाकाबंदी के खात्मे और मुंजमित असासों की बहाली समेत उन शराइत को दर्ज किया जिनका ईरान मुतालबा कर रहा है। उन्होंने फैसला कुन जंग के लिए ईरान की तैयारी का भी इजहार किया। ये देखना बाकी है कि क्या ये शराइत मुजाकरात की बहाली का बाइस बनती हैं। पाबंदियों से बचने के शुमाली कोरिया के तरीकों पर नजर रखने वाली एक टीम का कहना है कि 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से रूस में काम करने वाले शुमाली कोरियाई मजदूरों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। टीम का कहना है कि इनमें से कुछ कारकुन फौजी इस्तेमाल के लिए ड्रोन बनाते हैं। कसीरुज्जेहती पाबंदियों की निगरानी करने वाली टीम ने गुज़िश्ता बुध को एक रिपोर्ट जारी की। ये टीम जापान, अमेरिका और जनूबी कोरिया समेत 11 ममालिक ने कायम की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अंदाजे के मुताबिक गुज़िश्ता साल के आखिर तक 15,000 से 30,000 शुमाली कोरियाई बाशिंदे रूस में काम कर रहे थे। इसमें कहा गया है कि कारकुनों में रूस के जमहूरिया तातारिस्तान में वाक़ अलाबुगा खसूसी इकतसादी जोन में तैनात एक ग्रुप भी शामिल है जहां वो यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल के लिए रूसी मुसल्लह अफवाज को फराहम किए जाने वाले फौजी ड्रोन्स की तैयारी में शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस की जानिब से 2020 में तालबिल वीजा रखने वालों को काम करने की इजाजत देने के लिए एक कानून में तरमीम के बाद इस तादाद में इजाफा हुआ जिसके नतीजे में शुमाली कोरिया के कारकुनों को तालिब इल्मों के तौर पर भेजने के लिए एक स्कीम बनाई गई। और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। एक बड़ा और शदीद समंदरी तूफान जापान के इजू जजायर के बहुत करीब है। जापान की मौसमियाती एजेंसी ने टोक्यो के इजू जजायर में ओशिमा कस्बे के लिए 5वें दर्जे का हंगामी इंतबाह जारी किया है। एजेंसी एहलकार लोगों पर जोर दे रहे हैं कि वो महफूज मकामात पर चले जाएं। और हुकूमत जापान के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क की कुल आबादी में 65 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों की तादाद एक नया रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों, तबसरों और तज्जियों के लिए आप जब चाहें विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।